0: आने की अलग पुरी जी महादेव देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर ओम शांति शांति शांति
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।

पर प्रभु जी साक्षी सुदयात्मा। दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।

परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतम् नमाम्यम् ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपन सजते सर्वं संध्या दीपम सर्व सत्यम

0: ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ सोऽहं सगुण ब्रह्म श्रीदीप परिपूर्ण नारायणाय नमः। ॐ श्री अलकपुरी जी महादेवाय की जय हो। अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवपुरी सा महादेव की, हरि गुरुदेव भगवान दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। ओम शांति शांति शांति।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महाशरणं सुजी गुरुदेव की जय।
0: Hey, where the air is going? Air is going from this side. Sure. Thank you. You can put it near Mahaprabhu ji here, maybe. You're here.
2: Yeah.
0: Oh, Mahaprabhu ji, that's for you, very good. Okay? Yeah.

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामान्य स्वामी नारायण जी गुरुदेव की जय।

भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेव
1: की जय। ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.